0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: आज तक शमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये शमा मरने को तैयार है।

0: भाई साहब संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
1: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।
2: वेट फॉर इट।

0: पहले स्कूल के बताएं, कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश स्कूल के बताएं, आई लव यू।
1: Oh, so just-

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: வா, தாவாது, தாங்கை, வாமா.
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। वाओ।

0: space station. Guyana. 98.1.
1: लिस्ट बोल के बताएं। कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताएं। आई लव यू।